जाम साथी धुमधाम राइड सपन नयाँ इभी मेरो टियागो इभीसँग लाइफ छ सुपर फन एल्डर्स लभ इट सो डु द यङ इट्स सेफ इट्स सेफ विल कैप द फन

हारने गिरने से तुझे बचा रहा हूँ, सब मुझे भाव दे तुम भी सबको बता रहा हूँ, तेरे बारे में सबको अच्छी बातें बता रहा हूँ, तेरे लिए मम्मी डैडी को मैं बैठा बना रहा हूँ, वजन मेरी थोड़ी घटा रहा हूँ, तुझे मीनू बॉडी पसंद है, मैं हिंदी खाने चबा रहा हूँ, सुनने में आया है तू लंदन में रहती है, अब भी क्या अब भी

प्यार में गिरने से तुझे बचा रहा हूँ, सब मुझे खाओ तेरे को भी सबको बता रहा हूँ, तेरे बारे में सबको अच्छी बातें बता रहा हूँ, तेरे लिए मम्मी डैडी को मैं घर पे बना रहा हूँ, वजन मेरी थोड़ी घटा रहा हूँ, तुझे ब्लू बॉडी पसंद है, मैं हिंदी खाने से बना रहा हूँ, तुमने में आया है, तू लंदन में रहती है, अब भी जाके

धुमधाम साथी धुमधाम राइट सपन नाइबी मेरो टिया गोपीजीसँग लाइफ छ सुपर फन. Elders love it, so do the young. It's safe, it's playful.